कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करता।

का चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतपुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संग्रो दुष्ट जेती उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु जितब सरणी।

करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

0: जुमा मुबारक है चिराग पटेल ने कराटीना से बहुत शुक्रिया आपका सना काना आपने भी और दिनेश पोपट नमस्कार आई एम हैप्पी टू एंजॉय द बेमिसाल प्लेलिस्ट एंड द शो थैंक यू सिड कप लंदन से दिनेश पोपट और लंदन से ही शब्बीर अहमद टू ऑल द ब्यूटीफुल व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट या मुझे लगा आप कह रहे हैं ऑल द ब्यूटीफुल लिसनर्स ऑफ कोर्स आप सब ब्यूटीफुल हैं भरत गंगाराम वंदनीय प्रवीण जी रघुनाथ मंदिर है अच्छा चलो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स देती हूँ थोड़ी देर के बाद भरत गंगाराम ओके ब्रेड वॉजंट ऑलवेज स्लाइस्ड कहते काट काट का थोड़े ब्रेड बिकती थी ब्रेड ओके स्लाइस्ड ब्रेड वॉज इन्वेंटेड इन 1928 एंड सोल्ड एज अ लग्जरी ये कटी हुई ब्रेड एक बहुत बड़ी समय लग्जरी हुआ करती थी सिर्फ अमीर कटी हुई ब्रेड खाते थे
1: रवि जी दिन सुहाने है ये मौसम बहार का ये गाना फिल्म पूनम का है 1954 की मूवी है जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और जिसकी धुन शंकर जय किशन ने बनाई है ये गाना कामिनी कौशल पे फिल्माया गया है उसके साथ ये मूवी में अशोक कुमार भी थे ये ब्यूटीफुल पुराना गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया

समिन मंदिर जब तक रहा बंद आपने उसको याद नहीं किया। मिसेज धंजल बहुत शुक्रिया आपका, और जैसे मैंने कहा प्यार अली भाटिया की बर्थडे है तो समिन वो भी मनाएंगे।

0: सामिन यादगार डुअर लता रफी की आवाज में अब देखते हैं कि किस किस ने विश भी किया है और लंदन से किस किस के सैली डार फ्रॉम लंदन, जगदीप नांद्रा लंदन, मुमताज सारंग लंदन, आप सब ने, शब्बीर अहमद ने भी विश किया है, प्यार अली को कहा है कि द बर्थडे बॉय को बहुत बहुत मुबारक, ऑलमाइटी ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ आमीन। चिराग पटेल ने कराटीना से और सना काना ने यहाँ से। चंद्रिका वासंत गोसाई आपका शुक्रिया। और अब देखते हैं सलमा अहमद क्या कहती हैं।
1: Someone asked me, what is your definition of a best friend? I replied, my Rabb, my Allah, the one who never leaves me, no matter what hardships I face. And he stays close when human beings leave. He is the most reliable friend we can have. You can trust him and he will never disappoint you. He hears every unspoken worry and a quiet prayer. Thank you, Juma Mubarak, Salma Ahmed, Kisum.
0: Aur Pyar Ali Bhatia ke liye ye gana.

0: Sometimes your relationship is not what you are imagining or not what you want to be, your friendship in that matter also, or relationship. Sometimes we look at the person, we want to be that person to be the way you imagine them to be, but they're not like that. So you need to let it go. You need to let it be. You know, there is a book that I talked about some time back on air, Mel Robbins. It's called Let Them. Okay. And Rasila, yes, you're saying you agree with Sonal and you've read that book too. In fact, you sent me that book. It is about let it be, let them be. Jo insaan jis situation mein hai, whether it's your friend, it's your closest person, it's your romantic relationship, parent, child, let it be. Let them be. It's okay. Time will tell, whatever it is. Sometimes you need to just let everything be and focus everything on your own self, your own well-being, your own health. Because end of the day, if you're going to crash, none of them are going to be there. Like, maybe they'll come and check on you and check on you regularly. But what about it? That's it. End of the day, you have to fight your battles by yourself. So it is the reality. It's a harsh truth. Yes, Paresh, it is so true. Life is really painful at times, but it is what it is.
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: ईस्ट एफएम और शुक्रवार की खबरें. पहले खबरों की सुर्खियां. न्यूयॉर्क में सदर की इन्वेस्टर्स से मुलाकातें. 47 काउंटीज में ड्रग अब्यूजर्स के लिए रिहैब सेंटर्स. इथियोपिया में खाना जंगी का खतरा और कॉकरोच पार्टी की मांग, हुकूमत को धमकी. खबरें तफसील से. सदर विलियम रूटो ने न्यूयॉर्क में कई निवेशकारियों के साथ मुलाकात की है, जिनमें ब्लूमबर्ग के बानी माइकल ब्लूमबर्ग शामिल हैं. स्वास्थ्य के शोबे, क्लीन एनर्जी में सरमाया लगाने पर आलमी लीडरों को आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं. नशे की दवाइयों के खिलाफ लड़ना है तो सिर्फ गैर सरकारी इदारे यानी एनजीओज पे ये काम नहीं छोड़ा जा सकता. रीच आउट रीहैब सेंटर के मालिक ने 47 काउंटीज में सेंटर्स खोलने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया है. ईएसीसी ने अदालत से इजाजत पा ली है किलिफी रजिस्ट्रार के खिलाफ उनकी 426.8 मिलियन शिलिंग के मकान, गाड़ियां और जमीन जब्त करने की. आरोपी की तनख्वाह से ये सब खरीदना नामुमकिन था. सरकार को वापस लौटाई जाए. आलमी खबरें. इथियोपियन फौज का कहना है कि टीगरे के हमले को नाकाम बना दिया गया जो मुल्क के उत्तर पे किया गया. अम्हारा में सिपाहियों ने टीगरे फौजियों को मार गिराया और हथियार कब्जे में ले लिए. दोनों खाना जंगी यानी सिविल वॉर की ओर बढ़ रहे हैं. भारत के जवानों की कॉकरोच जनता पार्टी ने चुनावी कमिश्नर गणेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. 48 घंटे में अगर वो त्याग पत्र नहीं देते तो मुल्क भर में एहतजाज होगा. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर एतराज किया गया मगर कमिश्नर ने ध्यान नहीं दिया. ये देश विद्रोही है, लोकतंत्र के लिए ये शख्स एक खतरा है. राहुल गांधी ने भी रेजिग्नेशन की मांग की है. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान के हमले का जवाब देते हुए 10 मकामात पर ड्रोन गिराए. इससे पहले पाकिस्तान के इत्तलात के वजीर ने कहा था कि सरहद पर अफगानी तालिबान फौज ने 8 ड्रोन दागे थे. तालिबान के तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद ने खबरों को मुस्तरद किया. اڈانی گروپ نے مغربی بنگال میں 1,00,000 کروڑ کے نویش کا اعلان کر دیا سڑکوں پلوں کی تعمیر توانائی گرین سیمنٹ سواست اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں اڈانی گروپ انویسٹ کرے گا یہ 2035 تک مکمل ہو جائے گا گوتم اڈانی نے کولکتہ میں اعلان کیا آسٹریلیا کے پردھان اینٹنی البنیز نے نندہ کی ہے اوپن اے آئی کی جن کے ایجنٹ نے سرکاری ویب سائٹ ہیک کر لی ویب سائٹ پہ ملک کے ہیلتھ کیئر سکیم کی معلومات تھی البنیز نے اوپن اے آئی کے سی او سیم آلٹمن سے شکایت کی ہے کہ ان کو مہینے لگے اعتراف کرنے کے لیے یہ تھیں آج کی خبریں میں ہوں پروین آدم
1: All the favorite songs you grew up listening to. And the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix. We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Niloufar.
0: All right, we are in the second hour of the show. I have some very special guest on my show today. And we're going to talk about some wonderful things with them. Music, musty, entertainment and so much more. Keep it East FM. This is Retro to Right Now with Niloufar.

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा